그럼 저거 도마나요. 야, 지금 저 도마가 있는 거 지금 네 가고 지금 맞은 탐제 보여. 그거 서로 셌군. 그거 서로 셌구나. 아저씨가 정런 그 어떤 담비인 담는 영우 용서서 살로트. 야, 알아치네 제키야 가트 큰비 큰아이 영심진 점등 살아와 영 용서 살로스래. 다 지금 혼디가 цхэн антхми сэшин шава север шечек уг цхэн дига ажан тамчаллаям детэрг гореш патав дмузкня шава тхми сэшин лэс сэшин чи жэн нхсэн ба юандэр жо пат тхми сэшин нь юандэн тхмэр код цхэн ажансэн юандэн тхми сэшин допи юандэн анас чэчэ сэрм ю юандэн жо би цхэн тхмэр ко ба ти цхэн хма жананам сэврэша паши индизи я тан динэн инэн ко юндэн сугун хондио тан дойн ангалас хваг чачи гын юм марваз к юндэн жопи цхэн хонди амун гын инэн ко ди шаа тхми сэшил тан ани тхми сэшил дин гын инэн ко жорч тан хчигэр тэ цхэн инэн ко га тхма нэ коле тиг цхэн жин хма танч буюм хсэвэр шэчил Тимуз кня юандын жопа тхми сашлыз. Ти гутун чи хоржин цавали ше жуа. Амусын нил тоз. Шуго намны аяр чи чинзын тмаи. Сайн цангун сарван да. Кынто жан би тмаи соз. Шива ти гутун на амусын нил тоз. Диян гэншиг намки шуго намны аяр чи ле чиви чинзын ти хтинжи тмаи соз. Ya, de gönlün yanına zıkkın uğur şey yapmadın ha. Namkı şükür tamçınlı. Tamçınlı, ayakka gün yanına zıkkın dil eşeği çınzın dukudu, çınzın sıkkın uçtın. On zikin yanına zıkkın çınağı da ınğısın yıl doğdu. Ya, sadece çöngünün yın zan ın bir gani kık sarıva kıntık şuan bahtiyin can bir çınağı da ki da ınğısın yıl doğdu. Şiva tabir, 특근등비 토마나요 비 우승 일도 시비 가독과 그치 연든 저 비 측지 특근 젠지 또는 용족 사브레샤 바타보 오지 단들의 특근 젠 흐슴 주지 오고라 특근 젠 흐슴 주니라 그건 조금 고 다 특근 그만 지는 근데 아 그만 지는 그 접줘 안디 그만 그 지근이라 그 접다 오고라 지금 오는 지라 그 다 특근 아니 그 타는 지라 그 고고 오는지 아니 그 다는 지금 오네 예 대야 강식 난키 쇼가 남네 아야치 딜리치비 천진디 흐진지 정의 응우성이 또지 야 대 회등 회치는 사지 그 천 그네요 흑장 원부가 아니 그 사람아 어전에 큰도 좀 받디 그 잠비 통화 탐지 그니나서 건데 응우성이 또지래 지금 천지 허줄라 원키와게 아마스르 니르토 슈그치 콜리춘 텀텀 흐튼지 가나와 서바티 중진실 인지 펑바영 문무가 잔츠는 좀 바람지소 시와타바 암스고 아마스르 니르토 스고노니라스 코안디 카토코 망름 카토코 요언드르 쳔무그즈레즈나 다 가마루땅 새로운이라스 코안디 마타바 오 티무즈레즈 티 슈그치 콜리춘 드즈레 다 예슈고 탐자라 튼튼 흐튼지가 나와 서비 아마스르니 또 그슬 예수고 다 쇼지 잠질디 담 내라 튼튼지 흐튼스구나 다 나민이라도 그니스티 야크르그 갑도 고디야 흐튼도 고디 가마스르니노 지가 가나와도 고디 카그니라도 그서바 나와 서바티 카그다 시지 그즈나 사지 탄지 뭐 아마스르니 또 그슬 야 종모 진실 임스구나 사지가 뭔가 뭔 좋지 오, 지금 나서 그 리가 펑빵도 혼대라요. 머름가 잔츠 좀 바람지 네 마스르니 또 어떻게지래. 다 사진 혼디가 뜨니 아 기능 탐칠니 나서 그가 카톡이 나서 그 마스르니 뜨니 나서 그 지르시 소스. 머름가 잔츠 그로 아 기능 그 망지 안 되지 나서 그 광방이 차는 뜨거니 아 기능 그 나서 그 광방도 혼디 아 머름 인들이 마스르 머름
Dino ko nyo zukuwa, ta kunga, tsu, tomana, amasir nito su kunu ga, yondin, dita, di, huitang, huichin, ganyi ki chane jele, huichin nyo zukuwa saji ga tangla, gilung tatak nyo zukuwa amasir nito, kumar shiwa tang. Huiti, shukchi nyo zukuwa, kolu, koli chuan dukundiya, tuncheng ga hchung ga nyo zukuwa, di hchung sarwa dukundi ga amasir nito shiwa. Dih ga nyo zukuwa ji, जिस जोर गुनुं दी तावेस गला यंदन तुम्ही सहसलस शिवातम यंगना खंतु निरो जिंतुं निंग चिगिन युंस कोरी साजे अरमुती सुचंग गोमन दनी दन चोलपिया खटगलोर्ची ठची कोलु यंग शिवातम वोजी तां जिग यंदन ना दी खंतु निरो सुगुनु निरात कहन जनाजु को ततंग यंदन दिखन्छ कुगन निवारी ते ते तुंतुं निमा खचिके न्याजुको यंचलायं युंसु कोर शेपान खुंदे न्याजुको साजी गर्मु जिक्तमची न्याजुको दी साई गुलान खुंदे येजी साई गुलान खुंदे न्याजुको खंतु निरो तिगजमेजी या सुचां न्याजुको गुहामाइंबा दनी दनते श्चोपी खटक लोर्जीगे न्याजुको खोलुं खुंदे या खंतु निरो जिले ता कुंमी युंदे न्याजुको खंतु निरो सुगुंद खुंदे цхкэн дэмүүн жиназ куаг жэн аниг таанин жиназ куаан дээ жэрэ савршэ чэ куу цхэн дээ ла юандэн тхумий сайшэлэ зэ куа цхкэн таан чэ чэ дээ тхумаана гуэнэр юандэн ин гуэнэр тхумаана жор гуэнэр дээ жиназ куа цхкэн жэн таам чэ кэ юн таамааник савршэ чэл ша цхчэ кэ жиназ куа савршэ чэл мүн дэмүүз гэлэ жиназ куа юандэн тхумий сайшэлэ зэ дээв жэн гэ сайшэл чэ жэн жва अजय जो बात होनी सच थी, तेरे चाचू तुम्हारे कोल्टी तो जंसल अजय जो लो तुम्हीं सल जी, अंग्यो जंतं तुम्हें मायन भी चाचू जंची अजय जो भी तो तुम्हारे योपाती तो कम हमारा नाम जो तुम सेवर से पास की गिनती जी, तां दिन अन्ना ने उसको आरुतं शावा योंदन अजय ने थामचे पो अच्छे तुम्हा rāngshīn jōpī jāngshē kūtī kāp kī jīnā zhukua tī guā tī tāng jīnā zhukua shikirī shikirī tālān dīgī nāng nīn jīnā zhukua mṛndā sā zhukua nū kūgā dī tā ngī wā jān tāng tāmūng māyīn bī chāy chī jāng dī gājī jōlī dīgī cikī tukhu tī tukhumir yō kū nirī cikīng tātik jīnā zhukua tukhumāna yō kū nirī yā tī tukhumāna yō lī dīgī cikīng jīnā lhamā tāñchī pūgā jōtun kūgī jīnā zhukua sāvir shē kū nirī dī yā tā Di arig tomer jopiq sashil zi. Ya, yondim tomer jopiq sashil. Shava tomer jopiq sashil. Zi tomer jopiq sashil. Tuma, tuma su kuru cikin tatak, tuma na yo pichani shikindari. O di yin zi. Di kutum chi horjiga zaga nang nishachwa. Chamjiga nangu la nipi dani wayi njorwaatag. Gangta tangshin. Hanam chi hanchu gangna aniwa lang zi. Siwaati, tiga chanji horjo la wongkiwaage. Chirik tarinda, alabji tangwa mongdi. Tili yuwa maipri panshangdi, arangni anayi chagambar tontan chukudi. Ariwa anyangla kodi ndigbyani siwaatawa amzi. Ya, chirik taris gunu jamchuzi, ta jamchuzi. Yandi, अलग के जनाज को ठंगा मंगवाजी, जामचुला अलग ची ठंगा मंगवाजी, या दिल्ली या मैं पर पंबाद खुंडे कंग्रेज़ ना पंबिशंग दे छत्तरे रेज़ी, छत्तरे चंबोरे रेज़ी ता जामचुरे रेत कितने, तेरे ना दिल्ली या मैं पास तुम के जम्मू से चले तो ना, यंग वंचल ना शेष कला कने, जामचुंड खुंडे दी लो दंगनंग ता जनाज को लन चिगा जी मन्नरा जनाज को युवाजी ओ तेरा शेष चीज़ होंगे तेरा ता दे अलाप ची ठंगा मंगपो जिले युवा में पर पंबिक्षिंग दे कहें जना ता छत्र चंबो जिले जामचो जिले कुंग जी जामचो न खोंडी जनाज को थला जोर गुंडे तो ना आरंग ने ना ये चंबर तोंतन चोस गुनो आरंग मुनी जी Orang muni jenazah suku ganjang cang barbi, tuan tuan suku suku no, cuma cuma itu kundi,
아리마 안녕라고 띠 늑히었니? 체미 때르르지다 잠초 옌득지래 뭐다 원치는 녀석 건디 잠초 전부 그나가 네 얼음부치는 거 소나다 네 총아 거리가 얼음부치는 거 녀석 잠초 전부 그나 주고 그래 되겠다 안녕라 아리와스 군으로 호티라 강아리와 특스나 잠초 전부 그나 안디 노르 군으로 호티 안녕라 아리와지 ते कौन दुखपा तो ना दुखसुगा ने जामतु चेंबू ती चतर सुगुनो जामतु दिए तो जिले ना कुम्मी जी जो पा तुम्ही किन खोंडे अजंग के जनाजु को अच्छीं दी जने निकायांस अंदी सेवरे शेचिक जाइनुगे जी जो पा तुम्ही से शिल्ले जी याना लोकशन डोमी अक्सोचे जिसे यं न्यूमर छवी चाइनंग चर्चर जंगजी लिटान जोंये शाही मगलम तो मंबी को कब चाहिए तो परिचर चाहता है वो जी अलौकिक ड्रामी इसको चिकायों ना इसको अजीर मु ताँ करियो नुग अंधी ड्रामी अलौकिक वों जी सोचती हैं जी सोचती संपूर्ण ना इसको चमी तीन खंडी हैं वो निम्न को ना इसको अनमाता है निम्न चुवा अगर चलन दे ना इसको सोचे तीन निम्न चवी चरणों से शिल लक्षण डोमी हैं जी तात कं कंगे ना तो को थाले सर्वश्रेष्ठ बात अच्छा लिट्टन जोंग सुकुनो लिट्टन जोंग शास सुकुनो ता काकला शास उखास सुकुनो उखबाग मंगे लिट्टा सुकुनो ना जो को चरिचे नाम पर चावा आते जी ता तंगना जो को लिचे तंगना चरिचे ना तो को तकचन ता जिगे नोस को मगलम त मंबी को कबचे यंग थपर जरा कंगरे तना यो लक्षण डोमीज कुंग शावा जोपा जी जोपा थुमी सासिन जिगदा छकन जन दी थानचे पोयंग सरशेपा दिता वसगला जी जोपा थुमी सासिन लस सासिन जि जन नावा हरग जोपा वर्च सासिन न हरग छ वर्त कोती छ अजांसे वर्ची अर्गजुल सेल्स अर्गचन हिचला छापी अर्ग जो भी छिचिग छिचिल चे वर्त कोपाती कुंगु को छिकन खसर शे पासी गिनती जे ता कुलन जनाज कोंदी अर्ग तंग शावा योंदन जी जो तुमान जो कुतिको तुमी सेचल जी जिगन दिन जनाज कोयो तुमान मंजुआ उन्दी वन जनाज को जगे ता वर्ची से शेर जी तुम्हारा वर्षन कोई जोर से कलाकर नहीं जाने चाहिए। तेरे तीन जनों को अर्ज कलाकर ने अंदी अक्षिला छापी जनों को अर्ज तक जो कुनो को अंदी नंबर अक्षिला नहीं। तीना तेरे यहाँ जनों को चक्चे के वर्ष कर देते हैं। तेरे कुंग ने को चक थम्चे पर सेवर से चुयो कुंग आतं छंदान दंता चलने थे गावा जी मुक्तकचं चंदन लाने तोपरेशल चिवाती थे गावी कर्शल थी खून नज़लाती जाचिंग ये कि पंतन जगने लयों लेनो थे शेपापु स्वेशीना दंता चल ते अमाशी छेतन चा गातुन ने चेवी गावा यों से जीवी मुक्तकचं चंदन थी चला तोपरेशल तो शेम दंता चल अमाशी अर्ग जो भी छह वर्तु को पाते कुंग छह जन सर्वश्रेष्ठ पाता है वो जी तो अर्ग जो पात थुमी सेशन ता वैनी जो का सेशन बखून जी जोरचन आमु चिकरी दंता चन तकजिले देखो दमे अलयं लेनो तो कलंदरे अलयं तकजुई जो का यंदा तो खोते अलयं लेनो जिले अलयं बखून दिए जो का जख्तम जिना तेजनाथ को देख अलयं लेनो जी ते कंगे लंबर शेपा तो ना दंता चन ते तो अमावस्या जी का लयं लंबा गवा जी मुक्त कचन चंचल आने तो पर शरीर तो जिले तो खुगे नाथ को गवा जी ले नरम के नाथ को दे रात गवी दे गवा तो खुन दे पहले मुक्त दे ना चंचल तो खुन दे लाज नाथ को रात शेपा पु तो पर शेपा पु कंगे इतना यह माशा रहे थे तेतर के जो कुनो दमनस कन्या ना जो कुआ ता रिग रिग जो पाइंग बन रही
아르기 지나가서 고한데 간지